llamadito. Estamos en vivo en esta mañana. Todo sintonizando Banda 93.3. Oye, a toda la gente que anda trabajando ahorita en la obra, en la construcción. A todos los arquitectos, a todos los contratistas, a todos los ingenieros, a todos los albañiles. Ahí reventando la bocina con el CCCCCCC B-Boy. A través de Banda 93.3 de Grupo Radio Centro. Somos la máxima audiencia en medio. Sabadito por la mañana, escuchando Banda 93.3 a todo volumen con el CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC